0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।
2: किसन चल स्टाइल।

0: तो पहले अपनी ही होनी चाहिए है ना, सही कि नहीं, अपने आप नु खुश रखो ता ही।
1: हाँ इंजॉय भी कर दें, बिल्कुल बिल्कुल। जी अपना आप नहीं खुश होवांगे ना, अपन तुसी दूसरे नु खुश कर ही नहीं सकते हो, थोड़ी खुद च कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुसी दूसरे नु किद्दां दोगे कॉन्फिडेंस ना।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: ते ए तां
2: एदां
1: है ही है। ते वीर जी मैं ना लास्ट वाले 2 डेज दे विच ना गल नहीं हो पाई ना, ते
2: ही।
1: ओ जिहड़े दोनों टॉपिक है ना, जिदा मैं पिछली गल नहीं कर रही, पर मैं ना इस बारी रिहा नहीं जा रहा, मैं ना पिछले जिहड़ा वेडनेसडे ते थर्सडे टॉपिक सी ना, ते ओहदे नाल रिलेटिव गल करनी हैगी, इमोशनल भी है, मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ हसा के भी जाऊंगी तुहानू मैं ना।
0: डन हो गया।
1: हाँ जी हाँ। ते जिदा वेडनेसडे नू प्रीतिंदर जी आए सी ना, गल्लां चल रही सी अपनियां पुरानियां है ना, यादा जिहड़ियां स्विंग मशीन
2: जी
1: वॉशिंग मशीन
2: मम्मी
1: है
2: दी
1: ना,
2: सिलाई मशीन। हाँ
1: ये
2: जी।
1: तो हाँ मम्मी दी सिलाई मशीन है ना, ये सारियां चीजां। ते स्विंग मशीन ते भी आनी है, पहला मैं वॉशिंग मशीन ते ना, एक्चुअली जदों मैं जिदा तुहानू पहला भी सारे नू दस्या ना कि मैं अपनी लाइफ दे विच बहुत स्ट्रगल कीता हैगा, कि करदे सारे ही है, बट मेरा डिफरेंट जो हैगा मैं नहीं भुल सकदी ओहनू ना, ये मेरा मेनू लगदा मेरा खजाना है। ते एक्चुअली साडे कोल ना टीवी भी नहीं सी, वॉशिंग मशीन भी नहीं सीगी ना, जदों मतलब पुराने सीगे जिहड़े ओह चले गए लेटेस्ट आ गए ना। हुण मैं काम कर रही हैगी हां, हुण मैं पापा वाला सिनेरियो तो चलो ओह भी दस दी अगे, ओह भी इहदे नाल रिलेट है। ते हुण मैं किवें करां, टीवी जदों देखदे नहीं सी ना, सानू इन्ना क्रेज नहीं सीगा, ते साडे ना गुआंढियां ने कहा करना, नीतू तो इत्थे आ के देख लिया कर, फिर की है घंटा। मैं कहां कि मैनूं जरूरी लगदा ही नहीं हैगा टीवी है ना, मैं आदत ही नहीं पाई इस चीज की, इहदे बिना सरदा नहीं हैगा ना, चलो हो गया। ते मेरे मम्मा बहुत सिक रहिंदे सीगे, ते मैनूं इदां लगदा सीगा है तां टीवी दी वी जरूरत है। ते मैं ना उहनां नूं बिना दस्से, जदों मतलब मैं हो गई इन्ना क लगा लो कमान जोगी ना, तो मैं पैसे इकट्ठे किए, ते सब तो पहला मैं वॉशिंग मशीन लीती। वो वॉशिंग मशीन ना 7,075 दी सीगी ना,
2: वाह
1: तुहानूं पता है वो
2: ब्यूटीफुल।
1: जिहड़ी खुशी सी ना। हांजी वो खुशी जदों पता है, मतलब मेरे मम्मा नूं देखो पता नहीं गा है ना, ते वो जदों मतलब आ रही है तां गली दियां लेडीज भी बैठियां ने, वो रेहड़े जिहे ते आंदी है, वो की खुशी हुंदी है। मेरे मम्मा ने एकदम आके देखिया कि मतलब मैं सुन रही सी, मैं इन्ना इमोशनल हो रही सी ना, मैं क्या मतलब पहली गल तां थोड़ा थैंक यू, तुसीं किन्ने वधिया वधिया ब्यूटीफुल टॉपिक लैके आंदे हो, कि कई वारी किसे दी अंदरूनी की जुड़िया हुंदा है ना, वो कोई जज नहीं कर सकता। हुण वो जिहड़ी खुशी है मैं अज तक वैसे भी हमेशा याद करदी हैगी, और देखो 7,500 दी सी, अज मैनूं लगदा 17,000-18,000 दी होगी मेरी मशीन ना।
0: सही गल
2: नहीं, पर उदों 7,500
1: मैनूं
2: भी
1: वो
2: बड़ी वड्डी
1: चीज
2: गल है।
0: हाँ मेन
1: बहुत,
0: गल तो यह
1: हांजी।
0: है।
1: ते और मेरे मम्मी दी जो खुशी हुई ना, मैं जो देखिया, और अच्छा उस तो बाद फिर देखो मैंने लिता, फिर महीने 2 महीने बाद फिर मैंने पैसे जोड़े, 6,500 दा फिर मैं टीवी लिता।
2: अच्छा।
1: ते मैनूं हांजी मैं टीवी भी लिता मैंने, क्योंकि मैनूं लगा ना पहला वॉशिंग मशीन ज्यादा जरूरी है, भी मम्मी बीमार रहिंदे आ, मैं भी हेल्प कर सकदी हां मम्मी दे नाल ना। ते मम्मी कहते तू मैनूं दस्या नहीं, और मैं ना तुसीं गल कर रही सी ना, मेरी मैं अपने फ्रेंड दे पापा नूं ही कहा सीगा, जिदा उन्हां दी हलवाई दी शॉप सी ना, ते उन्हां दे नाल ही जिवें अगली दुख दुख करना छड के वॉशिंग मशीन दी सीगी ना सारे आ, फिर मैं अंकल जी कोल गई, मेरे फ्रेंड दे पापा सीगे ना, ते भी वो कहिंदे मैं तुहानूं ठीक रेट लगवा दांगा। ते मैनूं अंदर भी हो रहा सीगा भी चलो भी इक वार जे मैं मतलब हैगे भी है, मतलब बहुत सारी देखो चीजां हुंदियां ना। ते अच्छा जिहड़ी स्विंग मशीन दी गल दसी, इह वी हासे वाली, मम्मी को तो हैगी, सी मैनूं लोकां ने बड़ा लगाया, नहीं तू साडा कर दे, नहीं तू बड़ा फ्री दे विच कम कराया ना सिख, जदों मैं थोड़ा बहुत सीखी सीगी ना, और लोकी आने बाने बड़ा कुछ करा लैंदे मेरे, पर्दे ठीक कर दे है ना, अल्टरेशन कर दे, ये वो है। ते कई बार ना मैं इत्थे बड़ा सोचदी हैगी अपने आप नूं, मैं कह नीतू भी यार सारियां गल्लां ठीक ने, जे मैं बाहर मैनूं कम करना पसंद नहीं, मैं सिलाई वधिया तरह ना सीख लैंदी, कम से कम गराज दे विच मैं अपना खोल के सिलाई मशीन सुत्ता कम ही करी जांदे। दोबारा सीखांगे ना थोड़ा टाइम लगा के फिर भावे आ जाए, मतलब दस रही याद इन जुड़ी हुई। अच्छा फिर जो कल वाला टॉपिक कल चली गया, हादसे वाला भी हो गया। वीर जी मैं ना इमोशनल दे नाल नाल ता हैगी हैगी सी, मैं कल्ली इन्ना हसी गई, मैं क्या चलो नहीं कॉल मेरी लग रही, मैं उन्हें फ्राइडे नूं अपना दिन बनाऊंगी। वीर जी मतलब मैं तुहानूं किवें दसा, हुण जिदा तुसीं स्टार्टिंग च ही कहता ना, जदों नोनिया दीदी कह रहे सीगे वी तुसीं कई तां जाणदे हो तुहाडे पापा दे आह परफ्यूम लगांदे सी, आह खेडदे सी, बाकी हुण बाकी की दसेगा। मतलब दिन मैनूं इदां हसा रहा सी, मैं क्या हुण मैं की दसा वी मेरे पापा नूं सौण दा ही इन्ना शौक सी, तां उठदे ही नहीं सी, मम्मी वाजा वाजा मारदे रहिंदे सी, उठो काम ते जाओ, दो पैसे कमा के आओ, न्याणे पालने है।
2: ਜਿਦਾਂ
1: ਇੱਕ ਪੈਂਪਰ ਚਾਇਲਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: सोना चाहिदा,
2: परोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया,
3: इथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-93
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल। हां जी।

0: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही थां उत्ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स, तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही। सुनते रहो रेडियो हांजी।
1: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD on roads on us. Conditions apply.
2: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
4: ते। ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए कित्थों?
5: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
3: टेंशन निधि टेंशन
4: की होया?
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल। हां जी हां जी।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना कर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों, टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Milton. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: Je tusi bimar ho ta AI kol nahi doctor kol janne ho, fir kanuni masle vich faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: VY Immigration and Education Consultant,
2: हर कदम तो आड़े नाल।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: डकैत तो साढ़े सारे दे अंदर हो मौका मिलता है जो हाथ लगता है वो लुट लेंदा है।
2: सिर्फ फिल्म ही नहीं ए है पंजाब दी सब तो बड़ी चोरी द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
1: जदों एक जोकर तख्त ते बैंदा है तां ओह राजा नहीं बनदा ओ पूरे राज नूं सर्कस बना लैंदा है।
2: स्टारिंग राज कुंद्रा पायल राजपूत गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हा को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tyreforce.com.au।
3: आर यू रेडी?
0: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर पावर एंड हैंड टूल्स स्लीपर हार्डवेयर डेकिंग सेफ्टी एंड वर्कवेयर विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ सब एक ही थां उत्ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून पता चलेगा इत्थे ही सुनदे रहो रेडियो हांजी।

0: टेंशन टेंशन निधि टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: अटेंशन ट्रैवलर्स The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au

जनाब अमीर मिनाई का शेर है। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। शायर कहते हैं कि इंसान जिंदगी में मुश्किल रास्तों से गुजर के ही कामयाबी हासिल करता है। सुर्खरू के माने हैं कामयाब होना, सक्सेसफुल। दूसरे लफ्जों में कहें तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इस बात की बहुत खूबसूरत मिसाल दी है शायर ने। मुलाहिज़ा फरमाएं।

विक्टोरिया दी प्रीमियर साबका प्रीमियर जैसिंटा एलन ने कहा कि अगली बार नहीं लड़नगे चोणा पर जीएसटी नू लेके आस्ट्रेलिया दे विच एक बड़ा खुलासा इको ही सूबे नू क्यों दित्तियां गईयां ने सारियां सहूलतां विक्टोरिया ते एनएसडब्ल्यू सूबे हुए नाराज और डार्विन टेस्ट दे विच आस्ट्रेलिया दी हालत कमजोर भारत दे विच एक होर सुरंग हादसा मजदूरां दी मौत पर नालसार यूनिवर्सिटी दे विच विरोध प्रदर्शन के दरमियान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुण अजिहा की किया हर वार उन्होंने टिप्पणी बन जाती है विवाद का विषय भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दीआं खबरां लैके आए हैं प्रोग्राम न्यूज़।

0: हेलो हाँ जी 1674
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
5: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
6: ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ
7: ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ
6: ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਕਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ
7: Starring Raj Kundra, Payal Rajput, Garvita Sadhwani, ate hor kai saathi kalakar. 7 August to tuhade nedle cinema gharan vich.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Radio Haji, 16748.

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी

0: खूबसूरत कुछ नहीं है जी, पर हमारे जैसे लोगों की किस्मत में इश्क नहीं होता।
1: ड्रग्स की शिपमेंट्स का बहुत बड़ा काम होने वाला है।
2: कैसा शिपमेंट?
1: पिंक लेडी।
3: ये देश की सुरक्षा की बात है, सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का।
4: अरे भाई, मेरा भाई, लॉन्ग टाइम। अब इंडियन डॉग के बारे में जानना है।
5: कैरी, मुझे तो लगा तू नर्क पे चील कर रहा होगा।
4: ये पूरा इलाका उसके कंट्रोल में है और तुम उसे पकड़ने आए हो।
6: बेसिकली ये फिल्म जड़ी है सेवन डॉग्स, वह जिमें बैड बॉयज वर्गा प्रोजेक्ट है, उदा का तुम प्रोजेक्ट कह लो, बट ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इस करके है क्योंकि ये इंडिया के तो सलमान खान तो संजय दत्त हो ही गए, ये इंडिया के ये मिसर दे मतलब अलग अलग सिनेमा दे कट्ठे लोग यूरोप के आर्टिस्ट हॉलीवुड के आर्टिस्ट कट्ठे ले हुए

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: If you can understand when I start Punjabi vich bolna, ta tusi Victoria Police vich naukri karan layi us ton vi vadh yog ho jinna tusi sochde ho. Vadhiya shuruati tankha naal shuru karo ate naukri dauran duji bhasha di varto karke patte kamao. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़े बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: Smith's Lane by Mowak Vich, अपने भविख की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है। अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड, कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

विक्टोरिया दी प्रीमियर साबका प्रीमियर जैसिंटा एलन ने कहा कि अगली बार नहीं लड़नगे चोणा, पर GST नू लेके आस्ट्रेलिया दे विच इक बड़ा खुलासा। इको ही सूबे नू क्यों दित्तियां गईयां ने सारियां सहूलतां, विक्टोरिया ते NSW सूबे होए नाराज। और डार्विन टेस्ट दे विच आस्ट्रेलिया दी हालत कमजोर। भारत दे विच इक होर सुरंग हादसा, मजदूरां दी मौत। पर नालसार यूनिवर्सिटी दे विच विरोध प्रदर्शन के दरमियान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुण अजिहा की किया, हर बार उन्होंने टिप्पणी बन जाती है विवाद का विषय। भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दीआं खबरां लैके आए हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच, अज 14 अगस्त 2026 शुक्रवार की शाम। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ के नाल करते हैं शुरुआत।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: अटेंशन ट्रैवलर्स The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: Wow! Teri sabji di khushbu ate taste vich kuch ta kamal hai. Mainu vi dasde hai secret. Amrit, ee kamal hai Gold Leaf Dairy de pure New Zealand ghee da. New Zealand vich free-range grass-fed gawan de dudh to taiyar. Na ta is vich oil, na hi koi color, hormones ya antibiotics. बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
4: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
6: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाडे करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल

0: सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते

0: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार से। हर घर ले जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करने ले हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1800-181-2227 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वालों अधिकारत।
1: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 डॉन स्टेल स्ट्रीट डेंडिनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी तां ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई इक भरोसेयोग नां, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड on us. Conditions apply.
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।